0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज। GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अवां जी स्किन डल एं बेरोनक लगे थी, हाने पेंजी स्किन खे दियो एक नओ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट एं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक, रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियण वधिक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर डी। बेहतरीन रिजल्ट हासिल करण लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी। मोबाइल नंबर 2301-43-842।
7: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
8: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
8: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।
9: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
5: त पोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एडो एफएम रेडियो आए
9: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
5: ऐं हाँ गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
9: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
9: 0331252578 6
5: जी हाँ 2315525786
9: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: गालियों जारी आहिन। सुठो मुआहिदो करण लाइ ईरान वटि ही आख़िरी मौक़ो आहे। ईरान मुआहिदो न कयो त खेसि तबाही खे मुंहुं डि॒यणो पवंदो। ईरान खे क़यादत जे ख़ात्मे खां अॻु आख़िरी मौक़ो डि॒यण चाहियूं था। उमीद आहे त ईरान अकुल खां कम वठंदो ऐं दुरुस्त फ़ैसिलो कंदो।

ईरान जे सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई जे सीनियर सलाहकार मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई चयो आहे त अमेरिकी शर्तनि ते आबन हरमुज़ न खुलंदो। ईरान पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइम आहे, आबन हरमुज़ मां कंहिं ॿिए रस्ते जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। ईरान जी वार्निंग ते जहाज़ वापसि मोटी रहिया आहिनि, कुझु जहाज़नि खे अमेरिका धिके रहियो आहे, उहे बि नुक़सान खां खाई वापसि मोटी खाई रहिया आहिनि। यूक्रेन खां पलांद लाइ टिनि हंधनि जी निशानदेही करे छॾी हुई, पर यूक्रेनी इख़्तियारनि फोन करे पंहिंजी ग़लती तस्लीम कई। आईंदा ॿीहर अहिड़ी ग़लती न करण जी पक ॾियण सबबि हमले जे इरादे खे मुलतवी करे छॾियो।

पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारीअ जा आज़ाद कश्मीर जे चूंडनि में नवाज़ लीग ते धांधलियुनि जा इल्ज़ाम। मुलगीर तहरीक हलाइण जो ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी पंहिंजे बयान में चयो आहे त नवाज़ लीग हुकूमत जा ॾींहं गणजी चुका आहिनि। आज़ाद कश्मीर में पीपी कारकुननि नवाज़ लीग जी ॾाढ जो मुक़ाबलो कयो ऐं शहादत माणी। ही शफ़ाफ़ चूंड न पर कातिल इलेक्शन हुई। मीरपुर ऐं मुज़फ़राबाद में चोरी कयल सीटूं हुननि खां वापसि वठंदसि। नवाज़ लीग गौर सां ॿुधे संदन ॾींहं गणजी चुका आहिनि।

कराची पुलिस जा अहलकार पुलिस मोबाइल में स्मगलिंग कंदे बलूचिस्तान में गिरफ्तार आईजी सिंध की मुदाखलत बाद सिंध पुलिस हवाले केस दाखिल करण बाद गिरफ्तारी भी जाहिर। स्मगलिंग में मुलविस अहलकार की सरपरस्ती कंदड़ एसएसपी जावेद जमीरुद्दीन फारूकी मुअत्तल। गिरफ्तार थियल अहलकार पुलिस मोबाइल में नशे वारियूं सोपारियूं सिगरेट ए बो सामान मौजूद हो। कराची क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन में मुकर्र एसएसपी जावेद जमीरुद्दीन फारूकी अहलकारन के छॾण लाइ भी पहुतो हो। अहलकारन खिलाफ दाखिल कयल एफआईआर में एसएसपी ए पुलिस मोबाइल जो जिक्र नाहे कयो वियो। आईजी सिंध पारां बि सख्त कार्रवाई की हिदायत।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
2: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर इत्माद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
2: अवां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारी जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
6: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
7: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
8: सुनते रहो GFM 90.4।
9: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
5: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
9: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
9: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
9: 03125252786।
5: जी हा, 2315-2576।
9: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: खुशखबरी अवांजे पैंजे शहर मातली में अवांजो जातल सुनातल निजामानी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे सामू सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अजा मुस्तफा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियन जो इलाज, बार जो न थियण बांझपन।
3: डॉक्टर अजा मुस्तफा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोजानो मरीजन जो इलाज कंदी। याद रख निजामानी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाए 24 कलाक खुलिल रहंदो। निजामानी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी आई फार्मेसी जी सहूलत मौजूद आहे। निजामानी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वने थी। वधीक मालूमात लाए एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301 43 842।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

नवा सूबा एजेंडा ते न आहे न ही आइन में का खोट आहे, खोट निज़ाम में न पर असां में आहे। असां आइन ते अमल न आहे कयो, आइन ऐं निज़ाम ते सचाई सां अमल कंदासीं त निज़ाम बि डिलीवर कंदो। वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनाउल्ला चयो आहे त असां आइन जी भञकड़ी कयूं ऐं निज़ाम खे जकड़ियल रखियूं त हीउ कम कीअं कंदो। हीउ सिस्टम अधु सदी कामयाब रहियो आहे, अॻिते बि कामयाब रहंदो। आज़ाद कश्मीर जी चूंड शफ़ाफ़ थी आहे, चूंड अमल मुकमिल थियण बाद पीपल्स पार्टी बि नतीजा तस्लीम करे वठंदी। अमेरिकी सदर ट्रंप जो हिकु भेरो ॿीहर ईरान खां सरेंडर करण जो मुतालबो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त सऊदी अरब, यूएई ऐं कतर समेत ॿियनि मुल्कनि जी दरख़्वास्त ते ईरान सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि। सुठो मुआहिदो करण लाइ ईरान वटि आख़िरी मौक़ो आहे। ईरान मुआहिदो न कयो त खेसि तबाही खे मुंहुं ॾियणो पवंदो। ईरान जे सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई जे सीनियर सलाहकार मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई चयो आहे त अमेरिकी शर्तनि ते आबनाह हुर्मुज़ न खुलंदो। ईरान पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइम आहे। ईरान जे वार्निंग ते जहाज़ वापसि मोटी रहिया आहिनि। कुझु जहाज़नि खे अमेरिका धिके रहियो आहे। जेके बि नुक़सान बाद मोटी रहिया आहिनि, यूक्रेन खां पलांद लाइ टिन हंधनि जी निशानदेही करे छॾी हुई, पर यूक्रेनी इख़्तियारनि फोन करे ग़लती तस्लीम कई ऐं ॿीहर ग़लती न करण जी ख़ातिरीअ ते हमले जो इरादो मुलतवी कयो।

सिंध समेत समूरे मुल्क में चालीह जा मातमी जुलूस, सिंध में चालीह जुलूसन लाइ सिक्योरिटी इंतिही सख़्त कई वई आहे। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, सखर ऐं लाड़काणे डिवीज़न जे मुख़्तलिफ़ शहरनि मां निकतल जुलूस मंज़िल तरफ़ रवां दवां। कराची में मर्कज़ी मातमी जुलूस लाइ 5,000 खां वधीक अहलकार मुक़ररु।

0: सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
2: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
0: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301-3843-842।
4: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
5: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
7: सुनते रहो GFM 90.4।
8: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
9: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
8: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
9: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
8: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
9: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
8: 03125252786।
9: जी हा 2315525786
8: GFM रेडियो नेटवर्क
9: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
3: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
2: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: उन खां अलावा असां वटि रीफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
3: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713800392।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
7: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-3843-842।
8: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
9: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो,
6: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
0: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
0: 03125257 86
6: जी हाँ 2315525786
0: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: नवा सूबा एजेंडा ते नाहिन नहीं आइन में का खोट आहे, खोट निजाम में न पर असा में आहे, असा आइन ते अमल नाहे कयो, आइन ए निजाम ते सच्चाई से अमल कंदासी त निजाम में डिलीवर कंदो। वजीर आजम जे सलाहकार राणा सनावला चयो आहे त असा आइन जी भंजकड़ी कयूं ए निजाम के जकड़े रखूं त ही कम कीअं कंदो। ही सिस्टम अध सदी कामयाब रहियो आहे, अॻिते बि कामयाब रहंदो। आज़ाद कश्मीर जी चूंड शफ़ाफ़ थी आहे, चूंड अमल मुकमिल थियण बाद पीपल्स पार्टी बि नतीजा तस्लीम करे वठंदी।

अमेरिकी सदर ट्रंप जो एक भेरो बीहर ईरान का सिलेंडर करण जो मुतालबो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है तो सऊदी अरब यूएई कतर समेत बेन मुल्क की दरख्वास्त से ईरान से गालू जारी हैं सुठो मुआहदो कर ईरान वट आखिरी मौको है ईरान मुआहदो न कर तो खेस तबाही।

ईरान जे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई जे सीनियर सलाहकार मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई चयो आहे त अमेरिकी शर्तनि ते आमना हरमुज न खुलंदो। ईरान पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइम आहे। ईरान जी वार्निंग ते जहाज़ वापसि मोटी रहिया आहिनि। कुझु जहाज़नि खे अमेरिका धिके रहियो आहे। जेके बि नुक़सान बाद मोटी रहिया आहिनि, यूक्रेन खां प्लांद लाइ टिन हंधनि जी निशानदेही करे छॾी हुई, पर यूक्रेनी इख़्तियारनि फोन करे ग़लती तस्लीम कई ऐं ॿीहर ग़लती न करण जी ख़ातिरीअ ते हमले जो इरादो मुल्तवी कयो।

पीजे लाइ के लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेज जो ऑपरेशन केतिराई खारजी जहनम भेड़ा सिक्योरिटी ज़रिए मौजूद फोर्सेज गुजी इतला ते लकी मरवत में ऑपरेशन कयो वयो जंहिं दौरान दहशतगर्दन जे थाकन खे निशानो बणायो वयो। ऑपरेशन दौरान केतिराई खारजी दहशतगर्द मारजी विया ऐं संदन थाक तबाह कया विया। सिंध समेत समूरे मुल्क में पुलिस के शहीदन जो डियाड़ो अज मल्हायो पियो वञे। सिंध के मुख्तलिफ शहरन में पुलिस ऑफिसरन ए जवानन के शहीदन की मज़ार ते हाजिरियूं गुलन जूं चादरूं रखी सलामियूं डिनियूं वयूं। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, घरू वजीर मोहसिन नकवी, पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ए बेन पारां पुलिस के शहीदन के भेटा पेश। सदर आसिफ जरदारी चयो त पुलिस मासूम जानन के तहफ़ुज़ लाइ पुलिस जूं कुर्बानियूं सारा जोगियूं आहिनि। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो त पुलिस जा शहीद क़ौम जो फ़ख्रु आहिनि। घरू वज़ीर मोहसिन नकवी चयो त वतन लाइ पुलिस जूं क़ुर्बानियूं विसारण जोगियूं न आहिनि। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त दहशतगर्दी ख़िलाफ़ वेड़ में पुलिस पहिरीं सफ़ में रही आहे।

सिंध समेत समूरे मुल्क में चालीह जा मातमी जुलूस, सिंध में चालीह जुलूसनि लाइ सिक्योरिटी इंतिहाई सख़्त कई वई आहे। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, सखर ऐं लाड़का डिवीज़न जे मुख़्तलिफ़ शहरनि मां निकतल जुलूस मंज़िल तरफ़ रवां दवां। कराचीअ में मर्कज़ी मातमी जुलूस लाइ 5000 खां वधीक अहलकार मुक़ररु।

टंडो मोहम्मद खान जे इलाइक़े बुल्ली शाह करीम भरिसां ज़री ज़मीन मां हिकु शख़्स जो तशद थियल लाश हथायो आहे। मक़तूल जी सुञाणप जिनहान सूमरो वासी नूर मोहम्मद उर्फ़ मामा नूरो सूमरो जे नाले सां कई वई। लाश अस्पताल मुंतकिल। पुलिस चयो आहे त मामले जी जांच करे रहिया आहियूं।

ककड़ वेझो थरड़ी जादू शहीद पुलिस मु बैनातो 300 रुपया रिश्वत न डेण ते गुल बबर वासी पीरसन पोरेत कंडो बबर के गडह गाडे सा बधी छड़ो पुलिस पोरेत कंडो बबर के काठ सा भरियल गडह गाडे सा हथ पेर बधी थाने अंदर विहारे छड़ो पोरेत जे गडह गाडे सा बदल होण वारो वीडियो वायरल थी वयो पोरेत कंडो बबर चयो आहे त मिस्कीन आया काठियूं करे घर जो गुजर सफर कंदो आया थरड़ी जादू शहीद पुलिस जे वडे मुंशी सरवर कंबराणी ऐं आशिक बबर रिश्वत न ॾियण ते तशद्दुद करे गाॾे सां बधो हो। बाडरे पुलिस वॾे भाउ खे क़तल कंदड़ नंढे भाउ खे गिरफ़्तार करे वरितो। जवाबदार राबेल जुड़े जो वॾे भाउ आसिफ जुड़े जो खे खंजरनि जा वार करे क़तल कयो हो।

0: सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज,
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
4: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310 41 43 842।
6: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03710030920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
8: अमड़ सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
9: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
8: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
9: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
8: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
9: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-200।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
10: पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
3: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
10: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
3: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन।
10: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
10: 0331252576।
3: जी हा, 2315525786।
10: जीएफएम रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: नाल खड़ा जचना है।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: ZFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो ZFM 90.4।

0: दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
3: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
2: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
3: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
4: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
7: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबॉरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-43-843-842।
8: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।
9: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
6: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
9: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
6: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन।
9: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
9: 0331252576।
6: जी हा, 3135525786।
9: जीएफएम रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310 31 43 842।
4: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: west of Iran, backed by Saudi Arabia, backed by UAE, and backed by Qatar in particular, but others also. Many, many countries called, many of the leaders of many are friendly with a lot of them, almost all of them, one way or the other, and they all wanted to give this a last chance. This is a last chance. This is not something that, if it doesn't happen, this is a last chance for them to sign a good document. Yeah, please.
1: Mr. President, New York City Mayor Zohran Mamdani is required.
2: अमेरिकी सदर ट्रंप जो एक भेरो ॿीहर ईरान खां सरेंडर करण जो मुतालबो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त सऊदी अरब यूएई ऐं कतर समेत ॿियनि मुल्कनि जे दरख़्वास्तनि ते ईरान सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि। सुठो मुआदो करण लाइ ईरान वटि आख़िरी मौक़ो आहे। ईरान मुआदो न कयो त खेसि तबाही खे मुंहुं ॾियणो पवंदो। अमेरिकी सेनेट काम चयो आहे त ईरान जे बहरी नाकाबंदी जारी आहे। 44 बहरी जहाज़नि खे वापसि मोटायो वियो आहे, कुझ खे नाकारा बणायो आहे। अमेरिकी शर्तनि ते आबना हर्मुज़ न खुलंदो। ईरान पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइम आहे। अमेरिकी नाकाबंदी जारी रही त नतीजा ख़तरनाक निकिरी सघनि था। ईरान जे

सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई जे सीनियर सलाहकार मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई चयो आहे त ईरान अमेरिकी नाकाबंदीअ खे वधीक बर्दाश्त न कंदो। नाकाबंदीअ ते अमेरिकी बहरिया ऐं फ़ौज खे नतीजा भोगणा पवंदा। तेहरान आबरा हर्मुज़ मां कंहिं बि मुतबादल रस्ते जी इजाज़त न ॾींदो ऐं न ई क़बूल कंदो। आबरा ईरान जे वार्निंग ते जहाज़ वापसि मोटी रहिया आहिनि। नवां सूबा एजेंडा ते न ही आइन में का खोट आहे। खोट निज़ाम में न पर असां में आहे। असां आइन ते अमल नाहे कयो। आइन ऐं निज़ाम ते सचाई सां अमल कंदासीं त निज़ाम बि डिलीवर कंदो। वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनावला चयो आहे त असां आइन जी भंजकड़ी कयूं ऐं निज़ाम खे जकड़ियल रखूं त हीउ कम कीअं कंदो। हीउ सिस्टम अध सदी कामयाब रहियो आहे, अॻिते बि कामयाब रहंदो। आज़ाद कश्मीर जी चूंड शफ़ाफ़ थी आहे। चूंड अमल मुकमिल थियण बाद पीपल्स पार्टी बि नतीजा तस्लीम करे वठंदी। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि तालीम खाते बाबति अहम इजलास। तालीम वारे वज़ीर सैद सरदार शाह इजलास खे ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो त छहनि ज़िलनि में फ्रेम्स लाइ तदरीसी ऐं गैर तदरीसी अमले जी रजिस्ट्रेशन मुकमिल थी वई आहे। मुराद अली शाह चयो त सिंध जे छहनि ज़िलनि में तालीमी इदारनि अंदरि फ्रेम्स जी बाक़ायदा शुरूआति थी वेंदी। फ्रेम्स सां स्कूलनि में शफ़ाफ़ियत एहतसाब ऐं निगरानीअ खे हथी मिलंदी। पाकिस्तान खे बिजलीअ जी पैदावार न पर इस्तेमाल ऐं ज़खीरो करण जो चैलेंज आहे। मुल्क अंदरि कुदरती वसीलनि मां बिजलीअ जी पैदावारी सलाहियत बि 55% थी वई आहे। इस्लामाबाद में सोलर बाबति कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कंदे तवानाई वारे वज़ीर अवेस लगारी चयो आहे त पाकिस्तान तवानाई जे शोबे में तालीमी तब्दीलीअ मां गुज़री रहियो आहे। हिन वक़्ति मुल्क में सोलर ज़रिए 38,000 मेगावाट बिजली पैदा थी रही आहे। ॾींहं जो वाधू बिजली हूंदी आहे ऐं राति जो तलब वधी वेंदी आहे। बिजलीअ जो ज़खीरो ऐं इस्तेमाल मसइलो बणियल आहे। केपी जे इलाइक़े लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेज जो ऑपरेशन केतिरा ई ख़ारजी जहनम भेड़ा। सिक्योरिटी ज़रियनि मौजूदु फोर्सेज गुझी इतलाह ते लकी मरवत में ऑपरेशन कयो वियो, जंहिं दौरान दहशतगर्दनि जे ताक़नि खे निशानो बणायो वियो। ऑपरेशन दौरान केतिरा ई ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया ऐं संदन ताक तबाह थी विया। सिंध समेत समूरे मुल्क में पुलिस जे शहीदनि जो ॾियारो अॼु मल्हायो पियो वञे। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में पुलिस आफ़ीसरनि ऐं जवाननि जे शहीदनि जी मज़ार ते हाज़िरियूं गुलनि जूं चादरूं रखी सलामियूं ॾिनियूं वयूं। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ, घरू वज़ीर मोहसिन नकवी, पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारी ऐं ॿियनि पारां पुलिस जे शहीदनि खे भेटा पेश। सदर आसिफ ज़रदारी चयो त पुलिस मासूम जाननि जे तहफ़ुज़ लाइ पुलिस जूं क़ुर्बानीूं सारा जोगियूं आहिनि। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो त पुलिस जा शहीद क़ौम जो फ़ख्रु आहिनि। घरू वज़ीर मोहसिन नकवी चयो त वतन लाइ पुलिस जूं क़ुर्बानीूं विसारण जोगियूं न आहिनि। बिलावल भुटो ज़रदारी चयो त दहशतगर्दी ख़िलाफ़ वेड़ में पुलिस पहिरीं सिफ़ में रही आहे। सिंध समेत समूरे मुल्क में करबला जे शहीदनि जी यादि में आज़ादारी जारी। हज़रत इमाम हुसैन ऐं संदसि जान निसारनि जी यादि में निकतल 40 जा मातमी जलूस मंज़िल तरफ़ रवां दवां। कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, शहीद बेनज़ीर आबाद, सखर ऐं लाड़काणे डिवीज़न जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में निकतल जलूसनि जो सफ़र जारी आहे। कराची में मर्कज़ी मातमी जलूस लाइ 5,000 खां वधीक अहलकार मुक़रर। सूबे जे ॿियनि शहर में सिक्योरिटीअ जा सख़्त इंतज़ाम थियल आहिनि। टंडो मोहम्मद ख़ान जे इलाइक़े बुल्ली शाह करीम भरिसां ज़रई ज़मीन मां हिकु शख़्स जो तशदुद थियल लाश हथायो आहे। मक़तूल जी सुञाणप जनसाण सूमरो वासी नूर मोहम्मद उर्फ़ मामा नूरो सूमरे जे नाले सां कई वई आहे। लाश अस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे। पुलिस चयो आहे त मामले जी जांच करे रहिया आहियूं। मेहड़ मां 4 ॾींहं अॻु स्कूल वेंदे मुबैना तौर अॻवा थियल 3 शागिर्दियाणियुनि खे अदालत में पेश कयो वियो। शागिर्दियाणी रोशनी, फातिमा ऐं तंजीला पवार खे पुलिस अदालत में पेश कयो। पुलिस पारां गिरफ़्तार मुख्य जवाबदार ज़ैन महर खे बि अदालत में पेश कयो वियो। शागिर्दियाणियुनि अदालत में बयान ॾींदे चयो त कंहिं बि अॻवा नाहे कयो, मर्ज़ीअ सां हैदराबाद वयूं हुयूंसीं। हैदराबाद मां असां मीरपुर ख़ासि वयूंसीं, जितां पुलिस हथ कयो, कंहिं बि अॻवा नाहे कयो।
ककड़ वेझो थरी जादू शहीद पुलिस मुबैना तौर 300 रुपया रिश्वत न डेण ते गुल बबुर वासी पीरसन पोरेत कंडो बबुर के गडा गाड़े सां बधी छड़ियो। पुलिस पोरेत कंडो बबर के कार्ड सां भरियल गडा डे सां हथ बधी थाने अंदर विहारे छड़ियो। पोरेत जे गाड़े सां बधल हुअण वारी वीडियो वायरल थी वई। पोरेत कंडो बबर चयो आहे त मिस्कीन आहियां, काठियूं कंबर में खान वाह भरसा ज़रई ज़मीन जी मालिकियत आहे। मुगेरी बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में जहिड़ो गोलियूं लॻण सबबि पुलिस अहलकार अलावरायो, मुगेरी ज़ख़्मी, लाड़काणो मुंतकिल।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए बुड़ी 347-32-41-230।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
8: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
9: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
8: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
9: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
8: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
9: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
8: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
9: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
10: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GAFM 90.4।
4: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
6: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
11: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
11: 0331252578 6
6: जी हाँ 2315525786
11: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
1: सुनवारा हुस्न पाजो करे जाहिर नहीं दो करे जाहिर नहीं दो कर लिखण में छे न कोताही लिखण में छे न कोताही लिखण में छे न कोताही।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण और तुंजे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुन जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी। मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
6: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
8: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
8: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
8: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
8: 03125257 86
4: जी हाँ 2315525786
8: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रखंदा निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301343842।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
5: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 03125257 86।
1: जी हा, 2315525786।
5: GFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: We said we're talking. If we're not talking, when you know we're not talking, I'm saying we are talking right now. We're talking, and we're talking at the request of Iran, backed by Saudi Arabia, backed by UAE, and backed by Qatar in particular, but others also. Many countries called. They leave me friendly with a lot of them, almost all of them, one way or the other, and they all wanted to give this a last chance. This is a last chance. This is not something that, if it doesn't happen, this is a last chance for them to sign a good document. Go, please.
1: Mr. President, New York City Mayor Zohran Mamdani is required.
2: अमेरिकी सदर ट्रंप जो हिकु भेरो ॿीहर ईरान खां सरेंडर करण जो मुतालबो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त सऊदी अरब यूएई ऐं कतर समेत ॿियनि मुल्कनि जी दरख़्वास्त ते ईरान सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि। सुठो मुआदो करण लाइ ईरान वटि आख़िरी मौक़ो आहे। ईरान मुआदो न कयो त खेसि तबाही खे मुंहुं ॾियणो पवंदो। अमेरिकी सेनेट काम चयो आहे त ईरान जी बहरी नाकाबंदी जारी आहे। 44 बहरी जहाज़नि खे वापसि मोटायो वियो आहे, कुझु खे नाकारा बणायो आहे। अमेरिकी शर्तनि ते आबन हरमुज़ न खुलंदो। ईरान पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइमु आहे। अमेरिकी नाकाबंदी जारी रही त नतीजा ख़तरनाक निकिरी सघनि था। ईरान जे सुप्रीम लीडर आयतला ख़ामनाई जे सीनियर सलाहकार मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई चयो आहे त ईरान अमेरिकी नाकाबंदीअ खे वधीक बर्दाश्त न कंदो। नाकाबंदीअ ते अमेरिकी बहरिया ऐं फ़ौज खे नतीजा भोगणा पवंदा। तेहरान आबन हरमुज़ मां कंहिं बि मुतबादल रस्ते जी इजाज़त न ॾींदो, न ई क़बूल कंदो। आबन

0: नवां सूबा एजेंडा ते नाहिन नहीं आइन में का खोट आहे, खोट निज़ाम में न पर असां में आहे। असां आइन ते अमल नाहे कयो, आइन ऐं निज़ाम ते सचाई सां अमल कंदासीं त निज़ाम बि डिलीवर कंदो। वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनाउल्ला चयो आहे त असां आइन जी भञकड़ी कयूं ऐं निज़ाम खे जकड़ियल रखूं त हीउ कम कीअं कंदो। हीउ सिस्टम अध सदी कामयाब रहियो आहे, अॻिते बि कामयाब रहंदो। आज़ाद कश्मीर जी चूंड शफ़ाफ़ थी आहे, चूंड अमल मुकमिल थियण बाद पीपल्स पार्टी बि नतीजा तस्लीम करे वठंदी। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जी सदारत हेठि तालीम खाते बाबति अहम इजलास। तालीम वारे वज़ीर सैयद सरदार शाह इजलास खे ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो त छहनि ज़िलनि में फ्रेम्स लाइ तदरीसी ऐं गैर तदरीसी अमले जी रजिस्ट्रेशन मुकमिल थी वई आहे। मुराद अली शाह चयो त सिंध जे छहनि ज़िलनि में तालीमी इदारनि अंदरि फ्रेम्स जी बाक़ायदा शुरूआत थी वेंदी। फ्रेम्स मां स्कूलनि में शफ़ाफ़ियत, एहतसाब ऐं निगरानीअ खे हथी मिलंदी। पाकिस्तान खे बिजलीअ जी पैदावार न पर इस्तेमाल ऐं ज़खीरो करण जो चैलेंज आहे। मुल्क अंदरि कुदरती वसीलनि मां बिजलीअ जी पैदावारी सलाहियत बि 55% थी वई आहे। इस्लामाबाद में सोलर बाबति कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कंदे तवानाई वारे वज़ीर अवेस लगारी चयो आहे त पाकिस्तान तवानाई जे शोबे में तब्दीलीअ मां गुज़री रहियो आहे। हिन वक़्तु मुल्क में सोलर ज़रिए 38,000 मेगावाट बिजली पैदा थी रही आहे। ॾींहं जो वाधू बिजली हूंदी आहे ऐं राति जो तलब वधी वेंदी आहे। बिजलीअ जो ज़खीरो ऐं इस्तेमाल मसलो बणियल आहे। केपी जे इलाइक़े लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सिस जो ऑपरेशन, केतिरा ई ख़ारजी जहनुम भेड़ा। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब फोर्सिस गुजी इतला ते लकी मरवत में ऑपरेशन कयो वियो, जंहिं दौरान दहशतगर्दनि जे थाकनि खे निशानो बणायो वियो। ऑपरेशन दौरान केतिरा ई ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया ऐं संदन थाक तबाह कया विया। सिंध समेत समूरे मुल्क में पुलिस जे शहीदनि जो ॾियारो अॼु मल्हायो पियो वञे। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में पुलिस आफ़ीसरनि ऐं जवाननि जे शहीदनि जी मज़ार ते हाज़िरियूं। गुलनि जूं चादरूं रखी सलामियूं ॾिनियूं वयूं। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी, पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं ॿियनि 12 पुलिस जे शहीदनि खे भेटा पेश। सदर आसिफ ज़रदारी चयो आहे त पुलिस मासूम जाननि जे तहफ़ुज़ लाइ पुलिस जूं क़ुर्बानीूं सारा जोगियूं आहिनि। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो त पुलिस जा शहीद क़ौम जो फ़ख्रु आहिनि। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी चयो त वतन लाइ पुलिस जूं क़ुर्बानीूं विसारण जोगियूं न आहिनि। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ वेढ़ में पुलिस पहिरें ई सिफ में रही आहे। सिंध समेत समूरे मुल्क में करबला जे शहीदनि जी यादि में आज़ादारी जारी। हज़रत इमाम हुसैन ऐं संदसि जान निसारनि जी यादि में निकतल 40 जा मातमी जलूस मंज़िल तरफ़ रवां दवां। कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, शहीद बेनज़ीराबाद, सखर ऐं लाड़कानी डिवीज़न जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में निकतल जलूसनि जो सफ़र जारी। कराची में मरकज़ी मातमी जलूस लाइ 5,000 खां वधीक अहलकार मुक़रर। सूबे जे ॿियनि शहरनि में बि सिक्योरिटीअ जा सख़्त इंतज़ाम थियल आहिनि। टंडो मोहम्मद खान जे इलाइक़े बुल्ली शाह करीम भरिसां ज़रई ज़मीन मां हिकु शख़्स जो तशद थियल लाश हथायो आहे। मक़तूल जी सुञाणप जिनसाण सूमरो वासी नूर मोहम्मद उर्फ मामा नूरो सूमरो जे नाले सां कई वई। लाश अस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे। पुलिस चयो आहे त मामले जी जांच करे रहिया आहियूं। मेहड़ मां 4 ॾींहं अॻु स्कूल वेंदे मुबैना तौर अगवा थियल 3 शागिर्दियाणियुनि खे अदालत में पेश कयो वियो। शागिर्दियाणी रोशनी, फातिमा ऐं तंज़ीला खे पुलिस अदालत में पेश कयो। पुलिस पारां गिरफ़्तार मुख्य जवाबदार ज़ैन मार खे बि अदालत में पेश कयो वियो। शागिर्दाणियुनि अदालत में बयान ॾींदे चयो त कंहिं बि अगवा नाहे कयो, मर्ज़ीअ सां हैदराबाद वयूं हुयूंसीं। हैदराबाद मां असां मीरपुर ख़ासि वयूंसीं, जितां पुलिस हथु कयो, कंहिं बि अगवा नाहे कयो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
5: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
5: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
6: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230
8: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
9: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
6: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
3: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
10: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
8: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
10: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
8: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
10: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
10: 03132525786
8: जी हा 2315525786
10: GFM रेडियो नेटवर्क
8: सिंध जो आवाज़।

0: 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो GAFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: नाहे कयो। आईन ऐं निज़ाम ते सचाई सां अमल कंदासीं त निज़ाम बि डिलीवर कंदो। वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनाउला चयो आहे त असां आईन जी भञकड़ी कयूं ऐं निज़ाम खे जकड़ियल रखूं त ही कम कीअं कंदो। ही सिस्टम अधु सदी कामयाब रहियो आहे, अॻिते बि कामयाब रहंदो। आज़ाद कश्मीर जी चूंड शफ़ाफ़ थी आहे। चूंड अमल मुकमिल थियण बाद पीपल्स पार्टी बि नतीजा तस्लीम करे वठंदी। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि तालीम खाते बाबति अहम इजलास। तालीम वारे वज़ीर सैद सरदार शाह इजलास खे ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो त छहनि ज़िलनि में फ्रेम्स लाइ तदरीसी ऐं गैर तदरीसी अमल जी रजिस्ट्रेशन मुकमिल थी वई आहे। मुराद अली शाह चयो त सिंध जे छहनि ज़िलनि में तालीमी इदारनि अंदरि फ्रेम्स जी बाक़ायदा शुरूआत थी वेंदी। फ्रेम्स सां स्कूलनि में शफ़ाफ़ियत, एहतसाब ऐं निगरानीअ खे हथी मिलंदी। केपी जे इलाके लखी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेज जो ऑपरेशन केतिरा ई खारिजी जहनुम भेड़ा। सिक्योरिटी ज़रियनि मौजूदु फोर्सेज ॻुझी इतलाह ते लखी मरवत में ऑपरेशन कयो वियो, जंहिं दौरान दहशतगर्दनि जे थाकनि खे निशानो बणायो वियो। ऑपरेशन दौरान केतिरा ई खारिजी दहशतगर्द मारिजी विया ऐं संदन थाक तबाह कया विया। सिंध समेत समूरे मुल्क में पुलिस जे शहीदनि जो ॾियारो अॼु मल्हायो पियो वञे। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में पुलिस आफ़ीसरनि ऐं जवाननि जे शहीदनि जी मज़ार ते हाज़िरियूं, गुलनि जूं चादरूं रखी सलामियूं ॾिनियूं। सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, घरू वज़ीर मोहसिन नकवी, पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारी ऐं ॿियनि पारां पुलिस जे शहीदनि खे भेटा पेश। सदर आसिफ ज़रदारी चयो त पुलिस मासूम जाननि जे तहफ़ुज़ लाइ पुलिस जूं क़ुर्बानीयूं साराह जोगियूं आहिनि। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो त पुलिस जा शहीद क़ौम जो फ़ख्र आहिनि। घरू वज़ीर मोहसिन नकवी चयो त वतन लाइ पुलिस जूं क़ुर्बानीयूं विसारण जोगियूं न आहिनि। बिलावल भुटो ज़रदारी चयो त दहशतगर्दी ख़िलाफ़ वेहड़ में पुलिस पहिरीं सफ़ में रही आहे। सिंध समेत समूरे मुल्क में करबला जे शहीदनि जी यादि में आज़ादारी जारी। हज़रत इमाम हुसैन अलाम संदस जान निसारनि जी यादि में निकतल चालीह जा मातमी जलूस मंज़िल तरफ़ रवां दवां। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, सखर ऐं नाड़कानी डिवीज़न जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में निकतल जुलूसनि जो सफ़र जारी। कराची में मर्कज़ी मातमी जुलूस लाइ 5,000 खां वधीक अहलकार मुक़रर। सूबे जे ॿियनि शहरनि में बि सिक्योरिटीअ जा इंतज़ाम इंतिहाई सख़्त थियल। सिंध आबादगार बोर्ड जलालपुर केनाल ते लाॻीतो कम जारी रखण ते ॻणती ज़ाहिर करे छॾी। जलालपुर केनाल जे तामीर फौरी तौर रोके केनाल रिथार रद्द करण जो मुतालबो। सिंध आबादगार बोर्ड जो इजलास महमूद नवाज़ शाह जी सदारत हेठि हैदराबाद में थियो। सिंध आबादगार बोर्ड चयो त जलालपुर केनाल रिथा 116 किलोमीटर डिघी आहे, जंहिं मां
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 030029624-35। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।

0: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी याद रखंदा निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301343842।
2: खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
3: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
2: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
2: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
3: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
4: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
5: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
5: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 03125257 86
5: जी हा 2315525786
4: GAFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: आप सुन रहे हैं GFM 88 Network, सिंध की आवाज।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन, हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
6: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
8: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अमेरिकी शर्तनि ते अबन हरमुज न खुलंदो। ईरान पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइम आहे। अमेरिकी नाकाबंदी जारी रही त नतीजा ख़तरनाक निकिरी सघनि था। ईरान जे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनेई जे सीनियर सलाहकार मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई चयो आहे त ईरान अमेरिकी नाकाबंदीअ खे वधीक बर्दाश्त न कंदो। नाकाबंदीअ ते अमेरिकी बहिरिया ऐं फ़ौज खे नतीजा भोगणा पवंदा। तेहरान अबन हरमुज मां कंहिं बि मुतबादल रस्ते जी इजाज़त न ॾींदो ऐं न ई क़बूल कंदो। अबन हरमुज ईरान जे वार्निंग ते जहाज़ वापसि मोटी रहिया आहिनि।

0: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331252576।
0: जी हा, 2315525786।
1: GFM रेडियो नेटवर्क,
0: सिंध जो आवाज़।

0: It's 4:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: Mehran ki sakafat se gunda hua. आवाज की डोर से बंधा हुआ
4: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
5: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
4: सुनते रहो GFM 90.4

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज। GFM 90.4।

0: हेलो
1: हे नायल, आर यू फ्री? कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं कह रहे थे ना?
0: नहीं नहीं, तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है, बोलो।
1: असल में मुझे अपनी दोस्त के घर से नोट्स पिक करने हैं। कैन यू प्लीज टेक मी देयर?
0: हाँ, तुम बस रेडी हो जाओ, मैं आ रहा हूँ।
1: यू आर द स्वीटेस्ट पर्सन आई नो।
0: सी यू।

0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।
2: बाबू भाई बनना मुझे सार है। बाबू भाई

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
0: 03125252786।
1: जी हा, 3135525786।
0: जी एफ एम रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज। GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हय में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐ बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए बुड़ी 347-3-41-200
3: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
4: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301-43-842
5: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
5: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
6: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
7: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
0: सुनते रहो GFM 90.4

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

नवां सूबा अजंडा ते न हिन नई आइन में कफ कोर्ट आहे। कोर्ट निज़ाम में न पर असां में आहे। असां आइन ते अमल नाहे कयो। आइन ऐं निज़ाम ते सचाई सां अमल कंदासीं त निज़ाम बि डिलीवर कंदो। वज़ीरम सलाहकार राणा सनोला चयो आहे त असां आइन जी वजकड़ी कयूं ऐं निज़ाम खे जकड़ियल रखूं त ही कम कीअं कंदो। ही सिस्टम अधु सदी कामयाब रहियो आहे, अॻिते बि कामयाब रहंदो। आज़ाद कश्मीर जी चूंड शफ़ाफ़ थी आहे। चूंड अमल मुकमल थियण बाद पीपल्स पार्टी बि नतीजा तस्लीम करे वठंदी।

0: It's 6:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: खुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
0: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
3: खुशख़बरी खुशख़बरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
4: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
4: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
5: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: പുറത്തിന്റെ ബിമാരിന്റെ മാഹിർ ഡോക്ടറാണ് ഡോക്ടർ അതീക സയീദ്
1: റോസാനു സുബുജോ ഡേഹ ഖാ രാത് ജോ ഡേ ബജേ തായി മരീസൻ ജോ ഇലാജ് കണ്ടി
0: ഔലാദ ജോ നതിയാണ് औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
0: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-31-43-842
3: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
4: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
3: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
4: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
5: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
5: 03125-25786
1: जी हा 2315-25786
5: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
0: ख़ुशख़बरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
0: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
0: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
5: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
0: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN
1: सबूत इलेक्शन कमीशन अमलदारन हवाले कया वया हन वज़ीर-ए-आज़म जे सियासी मामलन वारे सलाहकार राणा सनावला चयो आहे त पीपल्स पार्टी वटि सबूत आहिनि त इलेक्शन कमीशन वटि जमा कराए सुबुह खां शाम ताईं पोलिंग थी पर का बि शिकायत साम्हूं न आई। पीपल्स पार्टी खटण ते ख़ुशी मल्हाईंदी आहे ऐं हारण ते धांधली जो घोड़ कंदी आहे। फिलहाल भुट्टो ॿुधाए त कंहिंजा ॾींहं गणजन शुरू थिया आहिनि, छा ऐवान सदर जा ॾींहं गणजन शुरू थी रहिया आहिनि? नवां सूबा ठहिण ख़राब ॻाल्हि नाहे, पर छा मुल्क हिन जी सट सही सघे थो? नवां सूबा ठहिण एतिरो आसान कम नाहे। मुल्की हालतुनि तां ध्यानु हटाइण लाइ नवां शोशा छॾिया पिया वञनि। मोहसिन नकवी वज़ीर-ए-आज़म जे मशवरे खां सवाइ अहिड़ी ॻाल्हि नथो करे सघे। मुल्क खे आइन मौजिब हलाइण जी ज़रूरत आहे। जमियत उलमा इस्लाम जे सरबराह मौलाना फज़लुर रहमान जी क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना फज़लुर रहमान चयो त बलोचिस्तान हुकूमत में शामिल न थियण जो फ़ैसिलो कयो आहे। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच जे बलोचिस्तान जो वॾो वज़ीर बणजण बाबति ॼाण न आहे। मुल्क में मर्ज़ीअ जूं हुकूमतूं ठाहिण सां जमहूरियत अॻिते न वधंदी। मुल्क में क़ौमी ऐं इंसाफ़ ते ॿधल पॉलिसी जी ज़रूरत आहे। नवां सूबा एजेंडा ते नाहिनि नई आइन में का खोट आहे। खोट निज़ाम में न पर असां में आहे। असां आइन ते अमल नाहे कयो ऐं नए निज़ाम ते सचाई सां अमल कंदासीं त निज़ाम बि डिलीवर कंदो। वज़ीर-ए-आज़म जे सलाहकार राणा सनावला चयो आहे त असां आइन जी भजकड़ी कयूं ऐं निज़ाम खे जकड़ियल रखूं त ही कम कीअं कंदो। ही सिस्टम अधु सदी कामयाब रहियो आहे, अॻिते बि कामयाब रहंदो।

0: ਰਾਣੀ ਚੌਕ ਮਾਤਲੀ ਤੇ ਔਰਤਨ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਿਆਣੀ ਡਾਕਟਰ ਅਤੀਕਾ ਸਈਦ
1: ਰੋਜ਼ਾਨੂ ਸੁਬੁਹ ਜੋ 10 ਖਾਂ ਰਾਤ ਜੋ 10 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਮਰੀਜ਼ਨ ਜੋ ਇਲਾਜ ਕੰਦੀ
0: ਔਲਾਦ ਜੋ ਨ ਥੀਣ औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3141-200 केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली खुशख़बरी
2: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
0: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी याद रखनि निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842
3: खुशख़बरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
4: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
3: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
4: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
5: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
5: बसि पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
5: 03125252786
1: जी हा 2315525786
5: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अमर सिंध के सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: दुखोयल इंसानियत की खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन के बीमारियों की माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानू सुबह जो 10 खा रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3141-200
3: केश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
4: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी याद रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842
5: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
5: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
6: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
7: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: अमर सिंध जे सींद में एक चमकंदड़ सितारो
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
7: खुशखबरी अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
8: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
9: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
8: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
9: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
8: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
9: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
8: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03710030920।
9: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
10: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: नवां सूबा ठहिण ख़राब ॻाल्हि नाहे, पर छा मुल्क इन जी सट सहे सघे थो? नवां सूबा ठहिण एतिरो आसान कम नाहे। मुल्की हालतुनि तां ध्यानु हटाइण लाइ नवां शोशा छॾिया पिया वञनि। मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म जे मशवरे खां सवाइ अहिड़ी ॻाल्हि नथो करे सघे। मुल्क खे आइन मौज भलाइण जी ज़रूरत आहे। जमियत उलमा इस्लाम जे सरबराह मौलाना फज़ल रहमान जी क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना फज़ल रहमान चयो त बलोचिस्तान हुकूमत में शामिल न थियण जो फ़ैसिलो कयो आहे। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच जे बलोचिस्तान जो वॾो वज़ीर बणजण बाबति ॼाण न आहे। मुल्क में मर्ज़ीअ जूं हुकूमतूं ठाहिण सां जमहूरियत अॻिते न वधंदी। मुल्क में क़ौमी ऐं इंसाफ़ ते ॿधल पॉलिसी जी ज़रूरत आहे।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: केश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट आरसीसी घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
1: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301343842।
3: ख़ुशख़बरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
4: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
4: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
5: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
0: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
0: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 03125252786।
0: जी हा, 2315525786।
5: GAFM रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230। केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: खुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
4: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
5: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
6: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।